गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे वाहे।

जनन पिता लोक सुत बनिता कोय न किसकी तरया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करया उडे उडे आवे स को संत इस पाछ बचरे शरया तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करया।

शरण परे की रख शर्मा, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखाने। दोहरा सगल द्वार का शाड कह कहो तुहार द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार का शाड कह गहो तुहार द्वार। बाहीं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दोता गावहो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार यहो करे तेरा कार्य सब सवारना।

संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे।

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईयो सतसंतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जेको खावै जेको पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो।

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सचा पातशाह सिर सहांदे

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम।

जन प्रभ तुम्हें बिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जिन परस्यो, से जन्म मरण दोह थेरयो, हर गुर नानक जिन परस्यो, से जन्म मरण दोह

बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे प्रथम

पवित्र स्थान सत खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर